सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं और हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब श्रोता सुने समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत हैं आज का चिंतन।
3: दृढ़ता क्या है और व्यक्तित्व के लिए इसका क्या महत्व है, इसे समझने के लिए हमें पहले 2-3 बातों को समझना होगा। दृढ़ होने का कतई ये अभिप्राय नहीं है कि आप दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखें या उन्हें डराने धमकाने का कार्य करें। दृढ़ होने का अभिप्राय है दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर अपने अधिकारों के लिए डटे रहना। इसका तात्पर्य यह है कि आप स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि आप अपने और दूसरे दोनों की भावनाओं और अधिकारों के प्रति सम्मान रखते हैं। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्म छवि का अभिन्न अंग है। दृढ़ता को एक तरह से व्यक्ति के मतों और आवश्यकताओं की ईमानदार अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। हम में से अधिकांश की सोच और काम करने का तरीका उन प्रभावों पर निर्भर करता है जो जीवन के शुरुआती वर्षों में हमारे मन पर पड़ते हैं। इन प्रभावों का एक बड़ा हिस्सा हमारे परिवार और आसपास के माहौल का होता है। अगर किसी को बचपन से ही बोलने पर निरुत्साहित किया गया हो तो बोलने या कुछ भी पूछने से घबराना उसके व्यक्तित्व का स्थायी गुण बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों या हितों की अनदेखी होती है और वो चाहने पर भी कुछ नहीं कह पाते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो दृढ़ता से अपनी बात कहने की आदत विकसित करें। किसी काम के लिए नहीं कहने में घबराएं नहीं और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने दिमाग से नकारात्मकता को हटाने का प्रयास करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो काम की शुरुआत ही हिचकिचाहट के साथ करते हैं। जब भी वे किसी बात पर अपना मत व्यक्त करते हैं तो उनकी आवाज बहुत हल्की हो जाती है और शारीरिक हाव-भाव में भी एक तरह की अनिश्चितता आ जाती है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य का आरंभ दृढ़ निश्चय के साथ करें। अगर दूसरा किसी कार्य के लिए कहता है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो साफ तौर से ना कहने में हिचकिचाएं नहीं। साथ ही ऐसा करके मन में अपराध बोध महसूस न करें बल्कि दूसरे को स्पष्ट रूप से इसका कारण भी बता दें। दृढ़ता का अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात पर कायम रहें, फिर भले ही आप पर किसी भी प्रकार का सांसारिक दबाव हो। दृढ़ता और आत्मसम्मान का आपस में गहरा संबंध है। आत्मसम्मान की कमी दृढ़ता की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने रुख पर कायम नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इससे दूसरा नाराज न हो जाए। इस तरह के दृष्टिकोण के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे दूसरे आपकी असाधारण क्षमताओं या योग्यताओं को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दृढ़ता संभवतः मानवीय व्यक्तित्व की परिचायक है। यद्यपि दृढ़ता से किसी अवसर पर आपको या दूसरों को सक्षमता का अभाव हो सकता है किंतु दीर्घावधि में ये सदैव लाभदायक होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, दृढ़ता क्या है, वाचन स्वर अनिल कुमार भारती। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदन के साथ।

समूह स्वरों में गाए इस मातृवंदन के बाद आइए अब आरंभ करते हैं प्रभु आराधना। प्रथम पूज गणपति जी की वंदना के साथ। अष्टविनायक विघ्ननाशक हैं, बुद्धि सिद्धि और मंगल के प्रतीक हैं। आप भक्त को आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हे गणपति हमारे प्रभु, जिसे आपकी श्रद्धा मिल गई, आपका विश्वास मिल गया, उसके जीवन में विनम्रता सद्बुद्धि और समर्पण का भाव स्वयं ही जागृत हो जाता है।

शिव स्मरण मन को शांति, विश्वास और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। जब भी भक्त सच्ची भावना से प्रभु को पुकारता है, वो निराश नहीं करते, वरन जीवन में आई कठिनाई को पल में दूर कर भक्त के मन में शांति का संचार करते हैं।

एक ही है, वही है जो जगत का पालन पोषण कर सभी भक्तों की मंगल की कामना भी करती है। माँ की करुणा और ममता ही हमारे जीवन के सुखों का आधार है।

माँ तुलसी महारानी, हम आपको प्रणाम कर आपके दिव्य स्वरूप का वंदन कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक पौधा नहीं हैं, वरन भक्ति, सात्विकता, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक हैं। आपकी सुगंध और पवित्रता वातावरण को शुद्ध कर निष्काम भक्ति का संदेश देती है।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। प्रातः के 6:40 होने को है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायिका थी रंजना जोगलेकर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

आज रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। प्रातः 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे निशा के गाए गढ़वाली लोकगीत। प्रातः 8:30 पर प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम होगा नमस्कार देहरादून। सुबह 9 बजे का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति होगा। सुबह 10:35 पर श्रोता सुनते हैं लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए ब्रज लोक संगीत। सुबह 11 बजे का समय रहेगा हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का।

दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे शोभा माथुर के गाए गीत। दोपहर 12:30 पर बहनें सुनती हैं कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम में हम अपनी बहनों को सुनवाएंगे भेंट वार्ता। श्रीमती सुषमा जोशी से आपसे बातचीत करेंगी कीर्ति जखमोला और बातचीत का विषय रहेगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग श्रोता सुनते हैं दोपहर 1:30 पर। सैनिक साथियों के लिए फिल्म संगीत दोपहर 2:30 पर और गाने नए तराने दोपहर 3:02 पर। आज अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे सप्तक शर्मा से 3 ताल में तबला वादन। अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे पार्श्व गायक कैलाश खेर। सायंकालीन सभा में श्रोता सुनेंगे सायं 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता। श्री विपुल नेगी से विनय ध्यानी की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा स्वस्थ शरीर का आधार पौष्टिक आहार और व्यायाम।

0: किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम में सायं 7 बजे सुनेंगे डॉक्टर रश्मि पवार से वार्ता, विषय रहेगा नींबू की खेती। सायं 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति होगी सप्ताह सार। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में श्रोता सुनेंगे हरिहरण की गाई गजल। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जकसांस्कृतिकप्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः, संस्कृतेः, आध्यात्मिकसम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्याससदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 जनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्यमहाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उपहिमालयी पश्चिम बंग, सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
2: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग $4.5 अरब है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honour of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
5: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation, and we are also hopeful for opening up new areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in 5 sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course educational and health sectors. More or less every area of human endeavor will be covered during the Prime Minister's visit.
4: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry, established by Prime Minister Narendra Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his 4-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Modi to the king and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with members of the Indian community in Bahrain. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir, POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad threatening a grand and final response on July 9th if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that at its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The committee has called upon residents throughout POK and members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9th. In football, Spain stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. Mikel Merino scored in the first minute of the second half stoppage time to secure the victory. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. They will now face either the USA or Belgium at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर. प्रातः के 7:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रसधार. कार्यक्रम का पहला गीत मन्नडे की आवाज़ में बम्बई का बापू फिल्म से मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और एस टी बर्मन का संगीत.
6: तक धुम बजे, हवा हवा

लोक रसधार कार्यक्रम का ये अगला गीत लगान फिल्म से आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और ए आर रहमान का संगीत।

0: लोक रसधार कार्यक्रम में अभी आपने सुना लगान फिल्म का गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब श्रोता सुने प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। राज्य में चार धाम हेली सेवाओं के अगले चरण से पहले सुरक्षा और ढांचे को मजबूत किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को समय से पूरा करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में नदी और जल स्रोत पुनर्जीवन को मजबूत करने पर जोर दिया और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में प्रदेश में हजारों लोगों ने लाभ लिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चारधाम हेली सेवाओं के अगले चरण से पहले सुरक्षा और ढांचे को अधिक मजबूत किए जाने पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस वर्ष की चारधाम हेली सेवाओं के प्रथम चरण के सफल संचालन की विस्तृत समीक्षा करते हुए राज्य में विमानन अवसंरचना के विस्तार, परिचालन सुरक्षा तथा भविष्य की विकास योजनाओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि चार धाम हेली सेवाओं का द्वितीय चरण का संचालन 15 सितंबर से प्रस्तावित है। इस मध्यावधि का उपयोग सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ करने, आवश्यक अवसंरचना विकसित करने तथा आगामी चरण की तैयारी को समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। श्री वर्धन ने राज्य सरकार एवं विभिन्न विमानन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे सुरक्षा उपायों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने भी परिचालन सुरक्षा, मौसम संबंधी सूचना तंत्र तथा यात्री सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को समय से पूरा करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून सचिवालय में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पंचककाल के दौरान कांवड़ मेले में अत्यधिक भीड़ रहेगी, जिसके लिए विशेष तैयारियां किए जाने की आवश्यकता है। कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ पटरियों व प्रमुख पड़ाव स्थल पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही मोबाइल शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही यात्रा मार्ग में अस्थायी सेक्टर चिकित्सालय, BLS एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार केंद्र आदि की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। मेले के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय बैठक शीघ्र आयोजित कराते हुए अन्य राज्यों से सहयोग का अनुरोध जल्द लिए जाने को कहा। हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देते हुए कुंभ नगरी के प्रमुख मंदिरों तक श्रद्धालुओं के सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक पैदल आवागमन के लिए पैदल मार्गों के सुधार तथा पैदल फुटपाथों के विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। इन कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों का

0: में से ऑनगोइंग है काम, जो रोड के काम है, रिन्यूअल के काम है, वो हमने बरसात के बाद ही टेकअप करने हैं। वो हमने इसी तरह से प्लान किया है कि बरसात के बाद ही।
1: मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करना राज्य सरकार एवं मेला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
2: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रदेश में नदी, धारा, नौला और जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन की दिशा में प्रयासों को नई गति देने के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन अथॉरिटी की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की सातवीं बैठक जलागम सचिव दिलीप चावल की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में जलागम सचिव ने नदी पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण, धारा नौला संरक्षण और एक जनपद एक नदी योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बागेश्वर की गरुण गंगा और पौड़ी की पश्चिमी नयार नदी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को समिति ने अनुमोदित किया। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 60 करोड़ रूपये है, जिन्हें अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय परियोजना समिति एनपीसी को भेजा जाएगा। इनमें गरुड़ गंगा परियोजना की लागत लगभग 12 करोड़ रुपए तथा पश्चिमी नयार परियोजनाओं की लागत करीब 48 करोड़ रुपए है। प्रदेश सरकार के जनजन की सरकार जनजन के द्वार अभियान के पहले 3 दिनों में प्रदेश भर में आयोजित विशेष शिविरों में हजारों लोगों ने विभिन्न सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। शिविरों में जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के साथ ही समाज कल्याण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा एवं कृषि उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अभियान के माध्यम से प्रशासन स्वयं लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है, साथ ही पात्र लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों और जनसांख्यिकी संतुलन के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात मुंबई में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी वासियों के भव्य सम्मेलन प्रदेश और देश विदेश में बसे उत्तराखंड मूल के लोगों के साथ आत्मीय संवाद के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में पिछले 5 वर्षों की विकास यात्रा, जनसेवा के संकल्प तथा उत्तराखंड के विजन को साझा करते हुए प्रवासी समाज को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां पहाड़ का पानी और जवानी प्रदेश के विकास में ही योगदान दे तथा किसी भी युवा को मजबूरी में पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव, आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, रोजगार और मजबूत आधारभूत संरचना के माध्यम से प्रदेश को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि भारत सरकार निधि जुटाने के लिए 10 जुलाई को 32,000 करोड़ रुपए के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करेगी, जिसका निपटान 13 जुलाई को निर्धारित है। नीलामी में 2 सरकारी प्रतिभूतियों का पुनः निर्गमन शामिल है। 21,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 6.36% सरकारी प्रतिभूति 2031 और 11,000 करोड़ रुपए के लिए 7.71% जीएस 2066 है। सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता स्वीकार करने का विकल्प भी अपने पास रखा है। आरबीआई के अनुसार नीलामी मुंबई कार्यालय के माध्यम से बहुमूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी। प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों प्रकार की बोलियां 10 जुलाई को आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएंगी। आरबीआई ने कहा कि ये प्रतिभूतियां न्यूनतम 10,000 रुपए के निवेश पर जारी की जाएंगी, जिसमें गैर प्रतिस्पर्धी खंड के तहत आवंटन पात्र खुदरा निवेशकों और संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। व्यक्तिगत निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्टर पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। ये नीलामी सरकार के बाजार से पैसा जुटाने के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संप्रभु ऋण उपकरणों के निर्गमन के माध्यम से अपने व्यय को वित्त पोषित करना है। पौड़ी गढ़वाल जिले में गगवाड़ स्यू घाटी के तमल गांव और कोट ब्लॉक के कुंडी गांव में आयोजित होने वाली मोरी मेले का समापन हो गया। ये मेला कुंभ और नंदा देवी राजजात की तरह 12 साल में एक बार मनाया

0: जाता है और पूरे 6 महीने तक चलता है। मेले में स्थानीय ग्रामीण पांडवों को देवताओं के रूप में पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने अज्ञातवास यात्रा के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे। मेला शुरू होने के बाद लगातार 6 महीने तक पारंपरिक वेशभूषा में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में चार धाम हेली सेवाओं के अगले चरण से पहले सुरक्षा और ढांचे को मजबूत किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को समय से पूरा करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में नदी और जल स्रोत पुनर्जीवन को मजबूत करने पर जोर दिया और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में प्रदेश में हजारों लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं निशा के गाए गढ़वाली लोकगीत। संगत कलाकार हैं ढोलक पर योगेंद्र सिंह, तबला पर हैं आयुष, हुड़का पर ज्योत सिंह, बांसुरी पर सुनील कुमार ध्यानी और हारमोनियम पर अभिषेक कश्यप।

0: यार तू तो हर स्कॉलरशिप की खबर पहले ही जान लेता है, आखिर राज क्या है?
1: कोई राज नहीं, मेरी योजना पढ़ता हूँ मैं।
0: अच्छा वो क्या है?
1: धामी सरकार की जनहित पुस्तिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में।
0: मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: शैल संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुन रहे हैं निशा के गाए गढ़वाली लोकगीत।

निशा के गाए गढ़वाली लोकगीत। इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे निशा की गाय गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार थे ढोलक पर योगेंद्र सिंह, तबला पर आयुष, हुड़का पर ज्योत सिंह, बांसुरी पर सुनील कुमार ध्यानी और हारमोनियम पर थे अभिषेक कश्यप। इसी के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
5: India and Indonesia are very close and strategic partners.
6: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ. जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ. जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
3: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
7: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।

0: Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम लेकर आ गए हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। जी श्रोताओं, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज के अंक में गीत, संगीत, जानकारी और सूचनाओं का समागम होगा। साथ ही अपने श्रोताओं से आज मैं बातचीत करने आया हूं, मैं यानी आपका साथी योगम्बर फूली। तो बहुत दिनों बाद इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं से बातचीत हो रही है और आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो क्षमा चाहता हूं लोगों से जो मुझे मिस कर रहे थे। और सच में श्रोताओं, मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा था। अब आप कहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं क्षमा मांग रहा हूं, आखिर क्यों? तो आपको बता दूं कि आज के दिन पर केवल मैं ही क्षमा नहीं मांग रहा, बल्कि पूरे विश्व भर में अपनी गलतियों की लोग क्षमा मांगते हैं। पर आज का ही दिन क्यों? यह आप लोगों के मन में भी प्रश्न हो रहा होगा और आप भी सोच रहे होंगे। तो किताबों में ढूंढिए, गूगल बाबा की मदद ले लीजिए या कुछ और तरीके अपनाइए, पर जल्दी से पता करिए, क्योंकि मैं अभी नहीं बताने वाला जी। और इस बात का मुझे खेद है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। पर हां, आज कार्यक्रम के बीच में मैं जरूर बताने वाला हूं क्षमा और आज का दिन क्यों है खास। तो ज्यादा जोर मत दीजिए अपने दिमाग पर और सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत। और शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार देहरादून की।

तो इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। तो श्रोताओं, अब जल्दी से नजर दौड़ाते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रदेश में गठित होंगे 8 नए सहकारी संघ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी आयोजित होंगे सहकारी मेले। उत्तराखंड सरकार में पूर्व सैनिकों विधवाओं को गृह कर में मिलेगी छूट। नाबार्ड को 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के प्रस्ताव भेजने का लक्ष्य। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में दिए निर्देश। प्रदेश में हर जिले में सिटी बसों की कार्य योजना हुई तैयार। केंद्र सरकार से मिलेंगी 140 इलेक्ट्रिक बसें। SIR विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण आज हो जाएगा समाप्त। जन्म प्रमाण पत्र डिजिटलीकरण के नियम बदले, CMO का अनुमोदन होगा जरूरी। आज होगी दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 14 से ट्रायल शुरू। ITI में प्रवेश के आवेदन की तिथि बढ़ी, 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं आवेदन। और दून में 86.34% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन हुआ पूरा। तो श्रोताओं, ये तो थी वो खबरें जो बनी हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज के संक में मनोरंजन भी होगा, सूचनाएं भी होंगी, जानकारियां भी होंगी और आज के विशेष दिन पर कुछ बातचीत भी होगी। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और आप तक पहुंचाते हैं ये प्यारा सा गीत। आइए सुन लेते हैं।

0: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि ये गीत आपके मन को भा रहे होंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और हमारे इस केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।
1: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके बीच में छोड़ा था कि आज के दिन विश्वभर में लोग एक दूसरे से क्षमा क्यों मांगते हैं। बहुत सारे श्रोताओं को पता चल भी गया होगा, तो चलिए हम साझा कर देते हैं वो बात कि आज है वैश्विक क्षमा दिवस। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस। कहा जाता है कि क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी आत्मिक शांति का मार्ग है। ये गुस्सा, द्वेष और नफरत को खत्म कर दिलों में प्रेम और अपनापन बढ़ाता है। इस दिन के महत्व को समझने के लिए आइए आपको सुना देते हैं ये विशेष बातचीत। वैश्विक क्षमा दिवस है और इस क्षमा दिवस के अवसर पर हम इस समय नेहरू कॉलोनी में स्थित डी ब्लॉक में एक बहुत सुंदर पार्क है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में एक शख्सियत हैं जो प्रेरणा देती हैं। यहाँ पे जितने भी हम देखते हैं बच्चे आते हैं उनको योग के बारे में, ध्यान के बारे में बताते रहते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं चंडी प्रसाद गैरोला जी से जो जयपुर में कोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में योग गुरु के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। आइए हमसे बातचीत करते हैं। गैरोला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज वैश्विक क्षमा दिवस है, क्या सोचना है आपका इस बारे में?
1: इस क्षमा दिवस के अवसर पर सभी बंधुओं को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बंधुओं, जिस उम्र में भी लगभग जैसे मेरे जैसी उम्र के जो पड़ाव पे हैं, हमें सभी को अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में, खान पान में बहुत कुछ बदलाव लाना चाहिए। वो बड़े होने के नाते, सीनियर होने के नाते अपने बड़ों को, अपने छोटों को सबसे पहले क्षमा कर जानी चाहिए। जो हुआ बीत गया, भूल जाए उस बात को। क्षमा मांगो, क्षमा कीजिए, यही जीवन का सत्यता है, यही प्रभु की कृपा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि व्यवहार को आपको ठीक करना है और जो क्षमा की भावना है अपने अंदर जगानी है, बीती बातों को भूल जाना है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम लोग कर नहीं पाते हैं। कभी कभी किसी की बातें हमें बहुत बुरी लग जाती हैं, तो कैसे फिर उन बुरी बातों को अपने दिमाग से हटाया जाए?
1: यदि सामने से कोई कड़वा शब्द आ रहा है, कोई ऐसी बात आ रही है, हमें थोड़ा उस पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़े अपने आप को जो शांत रहना पड़ेगा। वो समय, वो घड़ी निकल जाती है और सहज भाव आ जाते हैं। इसलिए सहजता जो है बहुत आवश्यक है, धैर्य इसमें बहुत आवश्यक है, समय का थोड़ा पाबंदी लानी पड़ेगी। ऐसे समय को जो है अपने आप को थोड़ा टालना होगा और यही जो है व्यवस्था भी बताती, ये प्रभु की कृपा भी बताती है कि हमें ऐसे समय पर जो है अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने हाव भाव को समझे उसको टालना चाहिए, धैर्य को ही धारण करना होगा।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही कि धैर्य को धारण करना होगा और वह क्षण भर की बात होती है जब हमें गुस्सा आता है और फिर वो समय चला जाता है। गैरोला साहब की अगर हम बात करें, आपका एक लंबा अनुभव है और आपकी एक अच्छी उम्र भी हो गई है और इस उम्र में भी आप तरोताजा दिखते हैं, तो हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कभी गैरोला साहब को कभी गुस्सा आ जाता है तो कैसे वो अपने मन को फिर विचलित नहीं होने देते हैं और कैसे क्षमा कर देते हैं?
1: मेरे अंदर भी सभी जैसे

0: आम आदमी होता है, गुस्सा सभी में होता है, सभी के में आता है, लेकिन जैसे मैं योग से जुड़ा हूँ, करे योग रहे निरोग, ऐसी निरंतरता शरीर में आई, वो गुस्सा, वो नशा, वो दुर्व्यवहार, वो दुर्वचन धीरे धीरे अपने आप ही अमिट होते गए, और ऐसे प्रभु की कृपा हुई। योग में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। करे योग रहे निरोग, योग से सारे जो है धर्म कर्म कर्तव्य के रास्ते निकलते हैं, तभी हम प्रभु के पास जा सकते हैं जब हम योग से जुड़ते हैं। इतनी बड़ी ताकत योग में है। हमारी पौराणिक पद्धति है योग, एक दो घंटे घंटे भर का नहीं है योग, एक जीवन पद्धति है, जीवन आचार है, शुद्धता है जीवन की, योग में छुपा हुआ है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और श्रोता सुन रहे होंगे कि गैरुल्लाह साहब कैसे नियंत्रित करते हैं अपने को, तो योग को उन्होंने अपने जीवन में उतारा हुआ है, चरितार्थ किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि योग के अंदर बहुत शक्ति है। अगर योग को आप सही तरीके से अपना लेते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, और यह बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। आज इस अवसर पर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी का जो है दिन जो है सुंदर व्यतीत हो, ऐसी मेरी शुभकामना।
1: क्षमा मांगना या क्षमा कर देना पूर्ण रूप से तब समाप्त हो जाता है जब आप मन में भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव को खत्म कर देते हैं। यही कहना है शिक्षिका आभा काला का।
2: नमस्कार, आज वैश्विक क्षमा दिवस है, एक ऐसा दिन जब मैं आपसे संबंधों में कटुता छोड़कर संवाद और समझ के स्तर पर आगे बढ़ने का संदेश देता है, आपसे संबंधों में फिर से मिठास खोलने का अवसर प्रदान करता है। अपने जीवन में हम कभी न कभी दूसरों की बातों व्यवहार से इतने आहत होते हैं कि हमें लगता है कि उस व्यक्ति को हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, और ये बात हम अपने मन में लेकर के बैठ जाते हैं, और नतीजा ये कि हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। हमारे मन में वही चल रहा होता है बार बार कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी ये भी होता है कि हम स्वयं ही भावात्रिक में क्रोध या अहम के कारण जाने अनजाने में घर परिवार के सदस्य, संबंधी, सहकर्मी या मित्रों के प्रति गलत व्यवहार या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाद में महसूस होता है कि बहुत गलत हुआ है, फिर ग्लानी के कारण क्षमा मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए अवसर प्रदान कर रहा है कि हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे या दूसरों की गलतियों के लिए उनको माफ कर दें, क्षमा कर दें। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि सिर्फ माफ कर दिया कहकर हम बात को खत्म नहीं कर सकते हैं। माफ कर दिया कहना काफी नहीं है, फॉरगिवनेस तब तक सफल नहीं है जब तक इसके साथ फॉरगेट ना हो। गलतियों को माफ करने के साथ साथ उन्हें भूलना आवश्यक है। यदि मन में अगले की गलती को आप बांधे रखते हैं, माफ कर दिया कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और ये भी आवश्यक है कि किसी को माफ करने में आपके अंदर एहसान का भाव ना हो, कि आप एहसान जता रहे हैं कि चलिए हमने आपको माफ कर दिया। खुले दिल से क्षमा करिए और अपने संबंधों को अपना तौर प्रेम की चाशनी में खुलने दीजिए।
1: तो श्रोताओं, ये थी वैश्विक क्षमा दिवस पर आज ये विशेष बातचीत, और अपने सभी श्रोताओं से हम दोनों हाथों को जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि अगर कोई गलती से हमसे कोई बात ऐसी निकल गई हो जो आपके मन पर घर कर गई हो और आपको बुरी लगी हो, तो आप सबसे निवेदन है आप आज क्षमा कर दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं अपना खास कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, और आज एक और विशेष दिवस पर भी हम बात कर लेते हैं। श्रोतों, आज है क्रिकेट जगत के सितारे का बर्थडे, जिसे आप जानते हैं कैप्टन कूल के नाम से। जी, आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी का। 7 जुलाई 1981 को बिहार में जन्मे उत्तराखंड मूल के धोनी ने भारत को 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। श्रोताओं, धोनी दुनिया के ऐसे पहले कप्तान हैं जिनके पास ICC के सभी कप हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आज भी साथी खिलाड़ी और धोनी के प्रशंसक मैदान में उनकी कमी को महसूस करते हैं। धोनी एक महान क्रिकेटर हैं क्योंकि वो अच्छा खेलने के साथ साथ जीतने का जुनून भी अपने अंदर रखते हैं, और शायद यही कारण है जो महेंद्र सिंह धोनी को एक सफल क्रिकेटर बनाता है। तो हम अपने कार्यक्रम की टीम की ओर से कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्म दिवस पर देते हैं बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: तो श्रोतों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ पे मनोरंजन भी होता है, तरह तरह की जानकारियाँ भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन जीवन में मिठास घोलने का दिन भी है। आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। आइए इस बारे में सुनते हैं ये विशेष बातचीत। हम हैं ग्ली म्यूज़िक एकेडमी में और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं और सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि चॉकलेट डे है और बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। और साथ में हैं इनकी जो वोकल कोच हैं, गुरु हैं, वंदना मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज चॉकलेट डे है, क्या कहना चाहेंगे?
1: नमस्कार सर। सर, चॉकलेट के बारे में तो ये पूछिए, मुझे इतनी क्रेविंग होती है। मुझे आप कोई भी चॉकलेट दे दीजिए, बस चॉकलेट दे दीजिए, तो चॉकलेट का शौक तो कभी नहीं जाएगा, बचपन से आज तक और आगे तक भी।
0: बचपन से और अभी तक आप चॉकलेट खा रही हैं जैसा बता रही हैं। अच्छा, ये शौक की बात है या चॉकलेट खाने के बाद अलग सा फील होता है, कुछ एनर्जी आती है?
1: सर, कुछ ऐसा होता है कि चॉकलेट हाथ में आई नहीं, और अगर चॉकलेट का साइज कितना भी बड़ा हो, मेरे हाथ में छोटे से छोटा भी खत्म कर दूंगी, बड़े से बड़ा भी खत्म कर दूंगी। अभी से मैं क्रेविंग कहूँ या टेस्ट पता नहीं।
0: आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये भी चॉकलेट खाते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लास में चॉकलेट लेके आए हैं और आप इन्हें डांटती हैं या इन्हें खाने देती
1: सर,
0: हैं?
1: चॉकलेट के लिए मैं अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकती, इनको क्या मना करूंगी। ये लोग चॉकलेट, इन लोग को मिलती भी हैं, और ये लोग अपने बर्थडे वगैरह पे जो पार्टी कुछ भी करते हैं, जब ये सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये चॉकलेट लाते भी हैं। तो बच्चों को हमारे चॉकलेट बहुत पसंद है, हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, क्योंकि शायद बचपना अभी तक
0: बिल्कुल
1: जिंदा
0: बिल्कुल।
1: है।
0: हम देखते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हम बच्चों पे लगा देते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्या आप भी ऐसा करती हैं?
1: सर, मैंने तो शुरू से अपने बच्चों

0: होगा, सब कुछ खाओ, चॉकलेट खाओ, ब्रश कर लो, सो जाओ।
1: श्रोताओं देखिए बहुत सुंदर बात मैम ने कही है कि चॉकलेट खाना है लेकिन उसके बाद ब्रश करना है और सावधानियां भी बरतनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम और बहुत बहुत आपको बधाई क्योंकि आप चॉकलेट इतना पसंद करती हैं। खूब चॉकलेट आप खाती रहें, आपके जीवन में ये मिठास हमेशा बनी रहे। अच्छा बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? बेटा
2: मेरा
1: रिधिमा। चॉकलेट पसंद है आपको? क्या
2: नाम
1: क्या चॉकलेट खाती हैं आप?
2: रिधिमा है। हाँ,
1: डार्क चॉकलेट भी खाती हैं आप या फिर मीठी वाली चॉकलेट आपको पसंद है?
2: डार्क चॉकलेट भी खाती हूँ।
1: अच्छा अगर आपको हम चॉकलेट देना चाहें तो कितनी चॉकलेट खा सकती हैं आप एक दिन में? बाप रे 10 चॉकलेट खाती हैं। तो ये दी रिद्धिमा, नन्ही सी रिद्धिमा हैं और चॉकलेट लवर हैं। एक और प्यारी सी बच्ची हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है बेटा? चॉकलेट कितनी पसंद है आपको और चॉकलेट खा के कैसे आपको क्या महसूस होता है?
2: मेरा नाम अमायरा और मुझे चॉकलेट खा के ऐसा लगता है कि मैं और खा लूं।
1: ओ वाह, चॉकलेट खा के आपको लगता है कि आप और खा लो, यानी कि आपको खुशी मिलती है चॉकलेट खाने से। आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा चॉकलेट खाने के बाद कुछ एनर्जी फील होता है या नींद आती है, सुस्ती आती है या फिर कुछ काम करने का मन करता है?
3: मेरा नाम मनुष्यता है और मैं कैसा कुछ फील नहीं
1: ओ
3: होता।
1: चॉकलेट खा के कुछ फील नहीं होता है, बस मन करता है कि चॉकलेट खाते रहें खाते रहें खाते रहें खाते हैं। और बच्चों चॉकलेट खानी चाहिए लेकिन खाने के बाद क्या करना है? चॉकलेट खाने के बाद क्या करना है? ब्रश करना है क्योंकि आपके जो टीथ हैं वो क्या रहने चाहिए? स्ट्रांग रहने चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खानी है, केवल चॉकलेट ही थोड़ी खानी है ना। हाँ और इसी तरीके से आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी। तो श्रोताओं हम थे गिली म्यूजिक एकेडमी में और देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह है और स्माइल फेस सबके, चॉकलेट लवर हैं और हो भी क्यों ही आजकल के बच्चे हैं। तो चॉकलेट खाते रहें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते रहें।
4: हैप्पी चॉकलेट डे।
1: चॉकलेट की अगर हम बात करें तो बच्चे हों बूढ़े हों जवान हों हर मन को भाती है चॉकलेट। और चॉकलेट पे आज हम बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर इप्सिता मलिक से। और आइए हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो चॉकलेट कैसी है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपको, आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कहते हैं कि चॉकलेट मिठास भर देती है हमारे जीवन में, किस तरीके से देखती हैं आप चॉकलेट को?
5: मैं दोनों तरफ से देखती हूँ चॉकलेट को, उसके हानिकारक भी हैं और उसके बेनिफिट्स भी हैं। जीवन में चॉकलेट बहुत ही हमें लुभावनी लगती है क्योंकि बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ही पसंद है। चॉकलेट हमारे मूड को भी तरोताजा कर देता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और हमें एंग्जाइटी से दूर रखता है। लेकिन उसके हानिकारक भी हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स होना, ज़्यादा चॉकलेट का सेवन करने से हमारे दांत में कीड़े पड़ सकते हैं, गड्ढे हो सकते हैं, और ज़्यादा चॉकलेट का सेवन करने से कई बार हमें माइग्रेन की समस्याएं भी होती है। तो हमें चॉकलेट से दूर ही नहीं बल्कि सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चॉकलेट को जब हमारी बीपी कम हो जाती है तो हम चॉकलेट दे देते हैं अक्सर, उससे बीपी हाई होता है। लेकिन जो आपका काला वाला चॉकलेट आता है ना, डार्क चॉकलेट, उसमें ना फ्लाबोनॉइड्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें कब चॉकलेट खाना है और कब नहीं खाना है,
1: कब खाना है और कब नहीं
5: हाँ।
1: खाना ये पता होना चाहिए और इसका ध्यान रखेंगे हमारे पेरेंट्स। लेकिन जो पेरेंट्स खुद ही चॉकलेट पसंद करते हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
5: हम ये सलाह देंगे कि कभी कभी खुशी के लिए तो हम चॉकलेट का सेवन करेंगे, लेकिन चॉकलेट खाने के बाद सबसे अच्छा है कि हम सावधानियां कुछ बरतेंगे। जैसे चॉकलेट खाने के बाद हम ब्रश कर लेंगे या फिर मुंह कुल्ला कर लेंगे, और चॉकलेट उस समय हमें खाना चाहिए जब हमें बहुत स्ट्रेस हो रही हो, हमारा मूड खुश हो जाता है और फिर हम कोई भी परेशानी होती है उसका सामना कर पाते हैं। लेकिन चॉकलेट उस समय हमें रोक देनी चाहिए जब हमारा, मान लीजिए कि बीपी बहुत ज़्यादा है, तो हमें डार्क चॉकलेट का सेवन करना चाहिए, और उस समय हमें व्हाइट चॉकलेट यानी जिसमें भेगान है उसे हमें नहीं खाना चाहिए।
1: कहा जाता है कि लीवर के लिए भी चॉकलेट ठीक होती है?
5: लीवर के लिए भी ठीक है, लेकिन जब तक हम छोटे हैं तब तक के लिए है, क्योंकि अगर हम ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो फैटी लीवर हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा एहतियात बरत के उस चॉकलेट का सेवन करना चाहिए।
1: तो शो तो आपने सुना कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, डॉक्टर इप्सिता मलिक बता रही हैं, ब्लैक जो डार्क चॉकलेट जिसे हम कहते हैं उपयोगी है, तो इसे खाया जा सकता है लेकिन सावधानी भी बरतनी है जैसे मैडम कह रही हैं। और जब भी हम चॉकलेट खाएं उसके बाद ब्रश करते दांत को साफ रखें क्योंकि दांतों को भी हमें सुरक्षित रखना है। तो बहुत सारी जानकारी आज आपने दी है और मुझे लगता है ये जानकारी बहुत लाभदायक होने वाली है हमारे श्रोताओं के लिए। तो आज के इस दिन पर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप सभी श्रोताओं के जीवन में भी मिठास बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब उस पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं जहां पर हम आपसे लेते हैं इजाजत। तो जल्दी से हमारा पता नोट करिए और भेजिए पत्र के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून।

सुकून हरिद्वार बाईपास देहरादून। हमारा पिन आपको याद है 248001, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो आपके पत्रों का रहेगा इंतजार। फिलहाल आज के लिए योगम्बर पोली को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे होगी भेंट। नमस्कार देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम आपको विकास, जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से जुड़ी प्रमुख जानकारियों से अवगत कराएंगे। आज के अंक में हम बात करेंगे देहरादून जिले की चिट्ठी की। आलेख है अवधेश नौटियाल का। राजधानी देहरादून में मानसून की दस्तक के साथ ही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार हो रही बारिश से शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली लौट आई है। वहीं जून माह के समापन के साथ ही राजधानी और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों से अधिकांश सैलानी अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर जुलाई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने पर जिले के सभी विद्यालय भी खुल गए हैं। सोमवार को विद्यालय में बच्चों की चहल पहल और रौनक एक बार फिर लौट आई, जिससे स्कूल परिसर फिर से जीवंत नजर आए। मौसम सुहावना होने से पार्कों और बाजारों में भी लोगों की आवाजाही बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित ITBP के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को जहां उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाएं ITBP को उनकी मांग का 25% ऑर्गेनिक सब्जियों की सप्लाई कर रही है। मुख्य उद्यान अधिकारी DK तिवारी ने बताया कि अब तक 1,00,000 रुपए से अधिक की सब्जियां ITBP को भेजी जा चुकी हैं। देहरादून जिला एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है, जिसे देखते हुए बाहरी राज्यों से अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए देहरादून भेजते हैं। इसी प्रकार बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत कपूर, बेटी मिशा कपूर और बेटे जैन कपूर के साथ मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी बेटी मिशा कपूर का एक प्रतिष्ठित स्कूल के समर प्रोग्राम में दाखिला कराया। बेटी को छात्रावास में छोड़ने के बाद शाहिद कपूर परिवार सहित मुंबई के लिए रवाना हो गए। यह स्कूल का इस वर्ष का दूसरा समर प्रोग्राम है। इसमें देश विदेश के 151 बच्चे भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम करीब 12 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रतिभागी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही खेल संबंधी गतिविधियों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बच्चे हिस्सा लेंगे। स्कूल परिसर पहुंचने पर शाहिद कपूर ने मुख्य विद्यालय भवन का भ्रमण किया। उन्होंने कैफेटेरिया और छात्रावास सहित विभिन्न स्थानों को भी देखा। शाहिद कपूर ने परिसर की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया। गर्मियों के मौसम का प्रमुख फल आम देहरादून में विशेष पहचान बना रहा है। देसी आमों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और भारतीय खाद्य विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवादान्य फार्म में आम विविधता महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में देसी आमों की 9 पारंपरिक किस्मों के साथ उनसे बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। करीब 80 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लेकर देसी आमों के स्वाद का आनंद लिया और जैव विविधता संरक्षण का संदेश ग्रहण किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा ने किया। डॉक्टर वंदना शिवा ने कहा कि आम केवल फलों का राजा नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और खाद्य संप्रभुता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देसी आमों की हर किस्म अपने भीतर सदियों का स्थानीय ज्ञान, विशिष्ट स्वाद और पोषण समेटे हुए है, और यदि इन पारंपरिक किस्मों का संरक्षण किया जाता है तो किसानों की आजीविका, पोषण सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। महोत्सव में प्रतिभागियों ने चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फजली, कलमी, गुलाब जामुन, लाल परी, तोतापुरी समेत कई स्थानीय किस्मों के आमों का स्वाद लिया। तो ये थी इस सप्ताह देहरादून जिले में हुई कुछ प्रमुख गतिविधियां, उपलब्धियां और विकास से जुड़ी खबरें। उम्मीद है जिले की चिट्ठी का ये अंक आपको पसंद आया होगा और आपने अपने जिले में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी जिले की नई उपलब्धियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मानव डोभाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:06 हुए हैं। पेश हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यानी इस पूरे सप्ताह को हमने वन महोत्सव के रूप में मनाया, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर प्रकृति के प्रति हमने सम्मान प्रदर्शित किया और हमारा उत्तराखंड तो इसे पर्व की तरह मनाता रहा है, जैसे हरेला पर्व। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती स्वयं ही हमें नतमस्तक कर देती है और जो भी आता है इस प्राकृतिक चित्रकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसी प्रकृति की खूबसूरती को हमारी फिल्मों में भी बखूबी दिखाया गया है। तो आज के सदाबहार फिल्मी गीत प्रकृति को, इसकी चित्रकारी को समर्पित रहेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ मुकेश की आवाज में। फिल्म है बूंद जो बन गई मोती।

इसी चित्रकारी से सजी है ये उजली सुबह, खिलते धूप उन पर गुंजन करते भौरे, बारिश की बूंदों में नहाई ये धरती, ये पर्वत, ये नदियां, ये झीलें, गुनगुनाते पक्षियों के कलरव से सजा नीला अनंत आकाश, और बालों को छूती ये पुरवाई, है ना मनमोहक सा एहसास। तो यही है वो गीत, ये सदाबहार गीत, इसने पुरवाइयों को भी दर्शाता एक गीत बनाया है। ये फिल्म है पूरब पश्चिम, जिसमें आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। इंदिवर की शब्द रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तो लीजिए आप सबके लिए कार्यक्रम का ये एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोता, हमारे चारों ओर जो ये प्राकृतिक छटा बिखरी पड़ी है ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका उपयोग या उपभोग करने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होती, ये हमें धरती की ओर से विरासत में मिली है। हमें तो बस इसको संजोना है, इसका संरक्षण करना है। जैसा हम देख रहे हैं, ऐसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसके सौंदर्य का आनंद ले सके। अभी आप आनंद लीजिए आज और कल फिल्म के इस गीत का, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, प्रकृति का एक अनोखा रूप है मौसम। ऋतुएं जो समय समय पर बदलती रहती हैं, एक तरफ झुलसाती भी गर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ रिमझिम बरसात है। कभी ठंड का एहसास होता है तो कुछ ही महीनों बाद बसंत भी शुरू हो जाएगा। तो बस यही बदलता मौसम जीवन को गतिशील बनाए रखता है और बताता है कि प्रकृति से किया जाने वाला प्रेम जीवन भर साथ रहेगा। इसलिए अपनी प्रकृति को बचाने में अपना योगदान जरूर दीजिए। आइए अभी आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि आप प्रकृति के हर रंग में, हर ऋतु में बह रहे हैं।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आप हमराज फिल्म का गीत सुन रहे थे। श्रोताओं, ये कुदरत ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है जिसके बिना हमारा ये जो जीवन है चल पाना कठिन है, या यूं कहें असंभव है। जब तक आप और हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर नहीं चलेंगे ना, तो ये हमारा स्वास्थ्य न बेहतर रहेगा और न ये धरती सुचारू रूप से चल पाएगी। तो इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हर व्यक्ति को निजी रूप से भागीदारी देनी होगी। अपने आसपास गंदगी नहीं होने देनी है और साथ ही प्रशासन के द्वारा जो भी नीति नियम बनाए जाते हैं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर या प्रकृति की साफ सफाई को लेकर, उसका हम सबको पालन करना है, तभी ये हमारी प्रकृति खूबसूरत रह पाएगी। तो एक कोशिश आपकी और हमारी होगी इस प्रकृति के लिए, तभी ये पत्ते ये पौधे खूबसूरत लग पाएंगे और गीतों की एक सार्थकता भी सिद्ध हो पाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत। फिल्म है एक बार फिर, अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

प्रकृति की सुंदरता को देखते रहने का ही मन नहीं करता, वरन इसके साथ बादलों को छूने के लिए उड़ने का भी मन करता है। तो आइए आपको भी ले चलें ऐसे ही गीत के साथ, जिसमें ऊंचे पर्वतों को, नीले आकाश को पंछियों के नजदीक से महसूस करने के लिए आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी की शब्द रचना और लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, जब ये प्रकृति इतनी खूबसूरत है तभी तो हम आजादी से सांस ले पा रहे हैं। मन मयूर प्रकृति के साथ बहता चला जा रहा है, मिलने उस साथी से जो हमसे थोड़ा दूर है पर मन के बहुत करीब है। बस इसी भावना को संजोता कार्यक्रम का ये सदाबहार गीत सहरा फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है, फिल्म गीत के बोल हैं, पंख होते तो उड़ आती रे।

श्रोताओं, इस समय जो हम इस पूरे सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि बस मॉनसून आने को है, या यूं कह लीजिए आप आजकल मॉनसून को महसूस भी कर रहे होंगे प्री मॉनसून के रूप में। तो बस ऐसे में आप जो भी पेड़ पौधे धरती माँ को समर्पित करते हैं ना, वो अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं बड़ी ही आसानी से। और जब आप उसमें लगातार पानी पड़ रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि उनका लगने का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, और हम अपनी प्रकृति के लिए एक छोटा सा सहयोग कर पाते हैं। क्योंकि प्रकृति में हो रहे लगातार नुकसान को रोकने के लिए हर व्यक्ति में जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अगर हम करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, ताकि हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण मिल सके, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भारत हम दे सकें। तो बस एक कोशिश आपकी और हमारी तरफ से होगी, इस बार हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और इस धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। और जब भी हम सुबह जागेंगे ना, तो कुछ इन एहसासों के साथ जागेंगे, जैसे हीरो फिल्म का ये गीत है जो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में है, जिसे अब आपको हम सुनवा रहे हैं।

श्रोतो, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हमें ही करना है। हमारे भविष्य के लिए ये स्वच्छ और सुंदर रहें, इसका ध्यान हमें आज से ही रखना होगा। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अधिक से अधिक पौधारोपण करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन से भी यही निकलेगा। जैसे मिली फिल्म के इस गीत में आप

लता दीदी को सुनेंगे। और ये गीत जब भी कोई फूल खिलता है तो हमारे मन में जो पहला गीत आता है ना वो यही होता है। तो बस आज के कार्यक्रम का समापन इसी खूबसूरत से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है, अब श्रोता सुने न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रविंद्र सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राज्य में चार धाम हेली सेवाओं के अगले चरण से पहले सुरक्षा और ढांचे को मजबूत करने के निर्देश। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को समय से पूरा करने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश में नदी और जल स्रोत पुनर्जीवन को मजबूत करने पर जोर दिया। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान में प्रदेश में हजारों लोगों ने लाभ लिया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया 14 जुलाई से, जबकि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी ने विश्व जूनोसिस दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली विभिन्न संक्रामक जूनोटिक बीमारियों के खतरों और उनके बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया। हरिद्वार में लोक पर्व हरेला के अवसर पर 16 जुलाई को 30,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। हरिद्वार में विशेष परिवर्तन अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने वाले 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों का चालान किया। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और मौसम विभाग ने राज्य के जिलों में अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत।

जिसे चाहा वो भी काश हमारा होता, हमारी भी ख्वाहिशों का कोई किनारा होता। ये सोचकर हमने भी उनको रोका नहीं, दूर ही क्यों जाता अगर वो शख्स हमारा होता। कार्यक्रम का ये गीत आप आए बहार आई फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

बहुत दर्द था उस शख्स की बातों में, बहुत दर्द था उस शख्स की बातों में। सुना है वो किसी से मोहब्बत करता था। आइए अब आपको सुनवाते हैं समीर कुमार की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत, प्यार झुकता नहीं फिल्म से। SH बिहारी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब आज के कार्यक्रम का समापन गीत शागिर्द फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रविंद्र सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल की तिथियां तय कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल 14 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। दोनों योजनाओं के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि

प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। वहीं फुटबॉल में बेल्जियम और सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 में एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर सहित कई जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के भी आसार हैं, जबकि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, मलबा आने और नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, पहाड़ी मार्गों पर विशेष सावधानी बरतने तथा नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी ने विश्व जूनोसिस दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान जिले की सभी चिकित्सा इकाइयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्कूलों में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारियां दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि ये दिवस मनाने का उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाली विभिन्न संक्रामक जूनोटिक बीमारियों के खतरों और उनके बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हरिद्वार जिले में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित कर रहे 20 टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों का चालान किया। विभाग ने सभी संबंधित संचालकों को बिना लाइसेंस संचालन बंद करने और जल्द आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था और नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। नई टिहरी में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जिलेवासियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए ब्रज लोकगीत।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

लोक संगीत कार्यक्रम में इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए ब्रज गीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।

0: विविध कलाकारों के गाए इन्हीं ब्रज लोकगीतों के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी
1: कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय ठीक 11 बजे है हमारे स्टूडियोज की घड़ी में और ये वक्त निर्धारित है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश के लिए। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आपके संदेशों के साथ। बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज हमें मिल चुके हैं और लगातार हमें संदेश आ रहे हैं। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग का दरिया से, सुनना चाहा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ मऊनाथ भंजन यूपी से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा और हकीकतपुरा मऊ से।

मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये मैसेज हमें लिख रहे हैं श्रोता हमारे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपक, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। उमेदा निजामाबाद तेलंगाना से हैं, मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिदा, आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया। दादरी गेट भिवाड़ी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा हैं। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी है नवाशहर पंजाब टोरोवाल गांव से। और मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बनी निशा और इनके घर के सारे सदस्य। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंदर सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का। श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, ये मैसेज हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं संजय कुमार नेगी, अंजना नेगी, डॉक्टर आकांक्षा सुधांशु नेगी हैं शिवपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से। ये मैसेज हमें लिखने वाले श्रोता हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और इनके साथी, मेरठ कैंट से हैं ये श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़, मुरादाबाद दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, शांति निवास लेह गांव अमरावती महाराष्ट्र से हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना आशीष और दीपक कुरहाड़े, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण और चंपा साहू, अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, फहीम, यासीन अंसारी और इनके साथी। अगला मैसेज हमें मिला है किशोर नगर अमरावती के श्रोताओं का, आप हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोडा ने। पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, एलेंदु कोंठा डेम डिस्ट्रिक्ट के हमारे श्रोता हैं तेलंगाना से, राजेश खन्ना, चिन्नापासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज, अमित खन्ना, अम्मी और बिल्लू। आदर्श नगर मलोट से हैं हमारे श्रोता राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ सायना और निवान शर्मा, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दिल्ली से हैं ध्वनि और सानवी, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। अगला मैसेज लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और इनके परिवार के सदस्य, आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय शुभम, पवन जरिये के, संजीव डावे राव, वैष्णो कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सातिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी वलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, वल्लार शाह से हैं सूरज, प्राची और एकलव्य। अगला मैसेज लिख रहे हैं सलार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन और साथी मैसेज करने वाले श्रोता हैं गांव हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत चिराग फिल्म से।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चिराग से। हमारे ये श्रोता हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं पटियाला पंजाब से, नाभा के सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, और साथ ही मैसेज करने वाले श्रोता हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से, चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, मोहल्ला हलवाइया शेरकुट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साज दारानी और हिना कौसर। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कड़ताल, रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। श्रोता है हमारे रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब लड्डू। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और मुन्ना नाजिम अंसारी। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इद्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। दतरेंगी से श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। सुदामा नगर ये हमारे श्रोता हैं रटलाई, झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्कीन हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म महबूब की मेहंदी से।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता समय सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगला गीत हम ले रहे हैं हिना फिल्म से। सुनना चाहा है नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चल्होत्रा, सुनीता शमी रजनी, आकाशदीप अनहद और गुरशब्द। साथ ही मैसेज मिला है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान का। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। आप श्रोता हैं मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक। ये श्रोता हमें लिख रहे हैं, नाम शामिल हो चुका है। अगला मैसेज लिखा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत ने। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी और राहुल वर्मा, विनीत और सोनम वर्मा। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। विक्रम कड़ावासरा, सचिन, सतीश और योगी युवद कड़ावासरा हैं हनुमानगढ़ राजस्थान, गांव कलाना, तहसील भदारा से। और अगला मैसेज हमें मिला है, श्रोता लिख रहे हैं बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। तेलंगाना वारंगल से हैं ख्वाजा रिजाउद्दीन, ख्वाजा फासीउद्दीन और आयशा तबस्सुम जुबेरिया। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। गांव झगुड़ी यमुनानगर से रणधीर बांगड़ गुरमेजो, गौरव परवीन, युगम और वीरेन, मनकीरत, मनराज। तेलंगाना भोंगीर से है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान, समायरा और आजमीन। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल नाज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और अफजल मलिक। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्रा। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा ताई, दिलीप और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुरा महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म हिना से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, अगली फरमाइश हम ले रहे हैं फिल्म सावन भादो के इस गीत से। ये श्रोता हमारे हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती चिड़िया और ओम भैया। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा। और अगला मैसेज हमें मिला है श्रोता है नरहन स्टेट समस्तीपुर से, ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारा सर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल। शास्त्री नगर बीड़ से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। अगला मैसेज हमें मिला है श्रोता है भोगुट्टा तेलंगाना से, छोटा पूरन, पृथ्वी, बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानु राज। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक प्रथमेश, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्हार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन जंघेल, आरुष

औशिका आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल। अगला मैसेज हमें मिला है, श्रोता है राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। गांव जाखुद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा परिधि मायरा सुरेशे। और आप हैं शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख तहसील आकोट से राजेश खोबरखेड़े, इंद्राताई शिवसागर, छकुली ताई स्वराज, दीपाली धांडे, तनुज सुनैना भोंडे, मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री हैं महमूपुरा सनावद मध्य प्रदेश से। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना हैं लदावली जिला मुरादाबाद से। प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली हैं कवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गौहाणकर राही, सरिता प्रिंस एकांश गौहाणकर और बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत गौहाणकर, अर्जुन और गौहाणकर टुक टुक। आकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गौहाणकर, सुमित कुमारी ध्वनि गौहाणकर परी। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा हैं एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह हैं ग्राम दुल्हापुर यूपी जिला मुरादाबाद से। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे कुमार, संचित बायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरवद सानवी और हर्षदा देशमुख। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म सावन भादों से।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

0: प्यासी झटका हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: श्रोताओं आपकी पसंद का अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद के साथ। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और साथ ही मैसेज कर रहे हैं श्रोता हैं ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, नीलम विजय, रश्मि संजय, कुसुम और रूपा इलाहाबादी, राजनगर कांति निकेतन से हैं कोशिश और कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि, कोमल गुप्ता माला और साक्षी मिश्रा, कृष्णा की नगरी मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील, आफ्ताब अंसारी, गुलिश्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। आप श्रोता हैं अडार नांदघाट घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, मैन रोड तिलहारा से हैं प्रकाश पोहार कर नर्मदा और कुमारी सुजाता पोहार कार, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, ताजपुरवा मोरवा समस्तीपुर बिहार से हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री, मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग आकांक्षा और माही मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा और हनुमान बोड़के, अंबेडकर नगर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। ये श्रोता हमें लिख रहे हैं, ये मैसेज हमें मिला है सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का, सुल्तानपुर यूपी से हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या और अविरल सिंह, गांव डाक निम्नाबाद, जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, पटियाली रोड गंज डुडवारा यूपी से हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जाबेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, शीर ये हमारे श्रोता हैं गंज डुडवारा से आफ्ता

अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार और चंद्रकला रेवाड़, गांव जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरी, राधेश्याम वंदना, भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, गांधीनगर अकोला से हैं रमेश कटनकर वैशाली और धनंजय कटनकर, सरोग चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, ये मुंगीसापुर के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निम्मी पम्मी सिया हरविता और निशांत ध्रुव, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, और अगला मैसेज हमें मिला है श्रोता है उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन, साथ ही इनके परिवार के सदस्य। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म राम लखन से।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमसाया से। इस गीत को सुनना चाहा है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोविया, कविता विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू ने। साथ ही में मैसेज करने वाले श्रोता हैं कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। और ये मैसेज हमें मिला है, आप श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला, श्रीमती बानी, लोकेश, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही, बेबी हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और पूरा रामेकर परिवार है रहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और आप श्रोता हैं कच्छ गुजरात से, गंगा वणकर, गोविंद, विकास वणकर, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश और जयंती। अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी किरण और वर्षा सुमन हैं किशनगंज बिहार से। जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रानू, रेनू, रिया, रागनी, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक हैं ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिस आसिफ शेख। और आप श्रोता हैं अगला मैसेज हमें मिला है, ये नाम शामिल हो चुका है सब्जी मंडी बुलढाणा के श्रोताओं का, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत और भरत मक्कड़ हैं, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से, सुनीता शिंदे, यशराज, प्रशांत, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक, पंढरपुर से हमें मैसेज लिख रहे हैं, अहमदपुर खैगांव महाराष्ट्र से हैं कैलाश फूलमाली, दीपक, समर और वैदिका फूलमाली। और आप श्रोता हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमानाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत हमसाया फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म से। सुनना चाहा है रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष और मयंक और जानकी साहू ने। साथ ही श्रोता है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, रासी राजेश और शीतल राजेश। और ये हमारे श्रोता हैं आशा नारंग, सोनाली सुरेश नारंग सहारनपुर से। गंगजला सहरसा बिहार से हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा।

0: होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल और साथी श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। तेलंगाना छोटूपल से हैं कस्तूरी रामेंदु भूमा देवी, पृथ्वी नारायणा। पिहरुआ बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया, जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, वसंतलाल, हीरा मोती और पन्ना लाल सा। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और आप श्रोता हैं, ये नाम शामिल हो चुका है। और अगला मैसेज हमें मिला है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के श्रोताओं का, आप हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिर नाजिया, नासिर साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपने ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्ने मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: Aaj humne defense exchange, disaster management aur industrial sahyog badhane par sahmati banayi. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
3: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: हम development, security, technology, culture और education हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
3: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the holy cave shrine in Kashmir. Eight people were killed and some others were missing after thunderstorms and gales brought by severe convective weather hit the eastern part of central China's Hubei province. According to a provincial emergency management authorities, thunderstorms, strong winds and tornadoes struck several cities last evening. In Huangkang, 275 people were injured while over 400 residents were shifted to safer locations. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, parts of Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Interior Karnataka, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim are also expected to experience heavy rainfall during the day. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 International of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in the forenoon session today. The Sensex climbed 307 points to 78,592, while the Nifty advanced 83 points to 24,514 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है. प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस.
4: ये आकाशवाणी देहरादून है. अब आप रविंद्र सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों और जनसांख्यिकीय संतुलन के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नाबार्ड की उच्च स्तरीय बैठक में प्राथमिक क्षेत्र पर जोर देते हुए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक प्रोजेक्ट शामिल किए जाने पर जोर दिया. मुख्य सचिव ने नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्राइमरी सेक्टर पर जोर देते हुए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक प्रोजेक्ट शामिल किए जाने के निर्देश विभागों को दिए. हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेला अधिकारी सोनिका ने विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया 14 जुलाई से जबकि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के चयन ट्रायल 1 अगस्त से शुरू होंगे. देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में 169 शिकायतें मिली, कई का मौके पर निस्तारण किया गया. जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए. जेलों को सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला कारागार पौड़ी में एक जेल एक उत्पाद पहल के तहत पिरूल क्राफ्ट आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का

0: शुभारंभ किया गया। हरिद्वार जिले के कलियर क्षेत्र में देर रात दो दोपहिया वाहनों की भिड़ंत में तीन युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है। चमोली जिले में सेवा सुशासन एवं समर्पण सप्ताह के अंतर्गत ज्योतिर्मठ में बहुउद्देशीय सेवा एवं जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। और राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। आप सुन रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस।
1: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा माथुर के गाए हुए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शोभा माथुर के गाए हुए गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में ठीक 12:30 और 8 सेकंड हुए हैं। अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति को देखता है, और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति। नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, आज के कार्यक्रम महिला जगत में मैं आपके साथ हूँ, कीर्ति जखमूला। बहनों, बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देते हैं वो वैसे ही व्यक्तित्व लेकर बड़े होते हैं। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में बच्चों की परवरिश पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक ओर तकनीक ने सीखने के अनगिनत अवसर दिए हैं, तो दूसरी ओर बच्चों का बचपन धीरे धीरे स्क्रीन की चमक में सिमटता जा रहा है। जरा याद कीजिए अपना बचपन। स्कूल से लौटते ही बस्ता एक तरफ रखकर हम मैदान की ओर भाग जाते थे। पेड़ों पर चढ़ना, सहेलियों के साथ खेलना, नानी दादी की कहानियां सुनना, यही हमारी दुनिया थी। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया में खेल के मैदान कम और मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा दिखाई देती है। ये बदलाव समय के साथ साथ आया है, लेकिन इस बदलाव के बीच में बचपन की मासूमियत बचाए रखना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। मोबाइल या इंटरनेट अपने आप में न तो अच्छे होते हैं न बुरे। इनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। अगर

बच्चा ऑनलाइन नई चीजें सीख रहा है, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान खोज रहा है, तो तकनीक उनका अच्छा साथी बन सकता है। लेकिन यदि वही तकनीक उनकी आदत बन जाए तो धीरे धीरे इसका असर उनकी पढ़ाई पर, व्यवहार, नींद और रिश्तों पर भी दिखाई देने लगता है। माता पिता होने के नाते हमें सिर्फ बच्चों को टोकना नहीं बल्कि उनके साथ चलना होगा। ये जानना होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और किन लोगों के संपर्क में हैं। सबसे जरूरी बात बहनों कि बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां वो बिना झिझक के अपनी हर बात हमसे साझा कर सकें। जब घर में संवाद जीवित रहता है तभी कई समस्याएं जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। आज बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे समय की है। दिन में आधा घंटा भी यदि हम पूरे मन के साथ उनके साथ बिताएं, उनके खेल में शामिल हों, उनकी बातें सुनें, उनको कहानियां सुनाएं या साथ बैठकर भोजन भी करें, तो ये समय किसी भी महंगे उपहार से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगा। बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि असली खुशी केवल मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि किताबों में, प्रकृति में, खेल के मैदान में, परिवार के साथ बिताए गए पलों में और अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत में भी होता है। डिजिटल युग को रोकना बहनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सही दिशा देना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आइए हम उन्हें ऐसी परवरिश दें जहां तकनीक भी हो, संस्कार भी, आधुनिक सोच भी हो और मानवीय संवेदनाएं भी, क्योंकि आज जिन हाथों में मोबाइल है कल उन्हीं हाथों में देश का भविष्य भी होगा। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको सोचने का नया नजरिया जरूर देगी। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब वक्त है एक खूबसूरत गीत का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों आइए अब आत्मनिर्भरता की ओर कदम विषय पर सुनते हैं श्रीमती सुषमा बिष्ट के साथ हमारी खास बातचीत। हमारे आज के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो न केवल एक अनुभवी शिक्षिका हैं बल्कि एक फिटनेस उत्साही भी हैं और साथ ही एक NGO से भी जुड़ी हैं। नमस्कार सुषमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया।
1: अच्छा सुषमा जी, आप कई सालों से पढ़ा रही हैं, एक अनुभवी शिक्षिका हैं और शिक्षा के माध्यम से कई बच्चों का आपने भविष्य संवारा है। हमें ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी पढ़ने में मदद करती हैं। तो हमें ये बताइए कि ये पहल आपने कब और कैसे शुरू?
2: धन्यवाद। एक्चुअली शिक्षा के प्रति मेरी बचपन से ही बहुत रुचि रही। मैं हमेशा शिक्षा को एक प्राथमिक हथियार मानती हूँ जो कि किसी भी बच्चे का भविष्य में बदलाव ला सकती है। लेकिन जब भी मुझे किसी भी बच्चे को आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण शिक्षा से वंचित रहते हुए देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था और हमेशा मैं यह सोचती थी कि जब मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर इन बच्चों के लिए काम करूंगी। और आज मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपनी शिक्षा द्वारा तथा आर्थिक सहायता द्वारा इन बच्चों की थोड़ी हेल्प कर एक्चुअली मैं क्लास 8वीं या 9वीं में होंगी जब हमने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा था
1: जी।
2: और उस समय उनकी एक शिक्षा थी कि अपनी आय का कम से कम 10% आपको डोनेशन या किसी की भी सहायता जरूरतमंद की करनी चाहिए और वह बात मैंने आज तक अपने साथ लेकर चली हूँ और मैं किसी भी तरीके से किसी भी ज़रूरतमंद को चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो मैं अपनी मदद वहाँ ज़रूर भेजती हूँ
1: जी।
2: मैं मानती हूँ कि शिक्षा ही वह हथियार है जो बच्चों को अपने सपने पूरे करेगा, उस परिवार का उत्थान करेगा और इस योगदान में मैं हमेशा अपने को तैयार महसूस कर। दिली इच्छा है मेरी कि खासकर महिलाएं या वह बच्चे जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है पढ़ने का उन्हें मैं पढ़ाऊं और उन्हें ऐसे मौका दूं कि जिस शिक्षा के द्वारा आगे अपना अपने परिवार का और आखिर में इस देश के लिए कुछ काम।
1: जी मैम, बहुत अच्छी सोच आपकी,
2: धन्यवाद।
1: तो सुषमा जी, आप कोई ऐसा यादगार अनुभव साझा कर सकती हैं जहां आपके प्रयासों से किसी बच्चे के जीवन में बदलाव आया हो?
2: हाँ, ऐसे छोटे मोटे तो बहुत इंसिडेंट हैं लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि COVID-19 के समय जब एक शिक्षा को छोड़कर ज़्यादातर सभी व्यवसाय हमारे बंद ही हो चुके थे और एक तो उस समय हमारे स्कूल में हम सब ने ऑनलाइन क्लास का एक नया माध्यम बच्चों से जुड़ने का ढूंढा। उस समय पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे अपने स्कूल में जब उसके माता पिता दोनों की नौकरी चली गई और बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार लेकिन केवल आर्थिक कमी के कारण उसको स्कूल में पढ़ाई से उसका फीस ना देने के कारण लगभग ये तय हो गया था कि अब ये बच्चा क्या करेगा, इसे स्कूल से निकालें क्या करें। उस समय मैंने उस बच्चे की 10वीं की 11वीं की और जब तक कोविड रहा आधी 12वीं तक लगभग मैंने उसकी फीस दी और आज वह बच्चा ग्राफिक एरा से इंजीनियरिंग 3rd या 4th ईयर में है और बहुत अच्छा कर रहा है उस फील्ड में। तो ऐसे ये मुझे हमेशा याद रखता है, जब भी वो बच्चा आता है वो मुझसे मिलकर जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया है। बहुत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है लेकिन वह बच्चा पढ़ रहा है और बहुत खुशी होती है कि हमारे एक छोटे से आर्थिक सहयोग से ये बच्चा बहुत अधिक आगे प्रगति करेगा, अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। इसी दौरान जो बच्चे दूर दराज थे, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, मैंने एक अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट किया जबकि मैं इतनी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ लेकिन अपने बच्चों की थोड़ी हेल्प लेकर मैंने एक अपना चैनल बनाया। आज भी बच्चे उस चैनल से पढ़ रहे हैं, दूर दराज के बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी अकेडमिया नाम का मेरा चैनल है YouTube में जिसमें कि मैंने अपने सारे 9वीं 10वीं के बच्चों के सारा जो पढ़ने का मटेरियल था वो डाला हुआ है। तो अंदर से मुझे शिक्षा के प्रति इतना लगाव है कि मुझे कोई रात के 12 बजे भी कोई पूछेगा कि मैडम ये बता दीजिए, कि मुझे तभी उसको आंसर देने का मन करता है।
1: जी अच्छा, सुषमा जी आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हैं, इसके बारे में भी बताइए, जैसे इस एनजीओ का क्या उद्देश्य है?
2: एक्चुअली मैं लोकल बहुत सारे एनजीओस में जाती हूँ, आर्थिक हेल्प करती हूँ, जैसे कि

0: जब भी किसी बच्चे हमारे घर में कोई जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है, तो हम यहाँ जाते हैं। जैसे एक बार हम चेशायर होम गए, जो कि हमारे डालनवाला में है, उनको उनसे पहले पूछ लिया, तो वहाँ नाश्ता हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। एक यहाँ पर लेप्रोसी का केंद्र है, वहाँ पर बहुत ही, मेरे ख्याल से वो जो गाँव है वो कोढ़ से श्रापित गाँव है, वहाँ आप जाइए वो इतने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दाता
1: जी
0: आ गए,
1: जी
0: दाता आ गए।
1: जी जी
0: तो बहुत दुख होता है, तो हम अपनी थोड़ी आर्थिक हेल्प कर लेते हैं। और एक से जो मैं ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ वो है अपना घर। बद्रीपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर अपना घर है, ये अधिकतर लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए काम करता है। यहाँ पर 7 से लेकर 18 साल की उम्र तक लड़कियाँ हैं, और यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे देहरादून में एक एनजीओ है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। यहाँ पर कई तरह के पुलिस के केसेस वगैरह आते हैं, और जो छोड़ी हुई लड़कियाँ या यहाँ कहीं पर चेहरे बच्चों के साथ जो गलत काम हो जाते हैं, ऐसी बच्चियाँ जिनके परिवार वाले उन्हें छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है, और वो वहाँ से इन बच्चों को कभी अपना घर में, कभी नारी निकेतन में, जैसे भी उनकी समस्या, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट के थ्रू ये इन एनजीओज में बच्चे आते हैं। हमारे पास इन एनजीओज का नंबर भी है कि कोई भी चाहे तो अपने, अगर आस पड़ोस में कोई लड़कियां ऐसे पता चलती हैं, तो इन नंबर्स पे आप डायरेक्ट जाकर आप इनको, इन बच्चों को वहां पर रजिस्टर करा सकते हैं।
1: जी
0: जैसे नंबर है, एक नंबर मैं आपको देती हूँ,
1: जी
0: 9412438290, और दूसरा नंबर है 9410469707। आप बच्चे वहां भेजिए, बच्चे उनके थ्रू जब अपना घर में आते हैं, तो हम उन बच्चों को, जैसे रोज समय नहीं मिल पाता, लेकिन
1: जी
0: वीकेंड में, हफ्ते के आखिरी में हम 2-2 घंटे जाके पढ़ा आते हैं।
1: जी
0: उनकी जो जरूरतें होती है, कभी वो लोग, मैडम इनके लिए स्कूल के बैग दिलवा दीजिए, लड़कियां हैं तो सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
1: जी
0: हम उनके कमरों में भी विजिट करते हैं, साफ सफाई का उनको बताते हैं कि लड़कियों की जिंदगी में साफ सफाई का क्या महत्व है, सबकी जिंदगी में, क्योंकि वहाँ बालिकाएं हैं तो स्पेशली उनसे ही बात की जाती है
1: जी
0: लड़कियों की। केवल इन चीज़ों को पूरा करके हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनके साथ हमको, टीनेज है, उनके उनके भी बड़े शौक हैं,
1: जी
0: उनको भी क्लिप, रबर बैंड, लिपस्टिक, बिंदी चाहिए, जो कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो दूसरों पर निर्भर है। तो कभी कभी हम उनसे ये भी बोलते हैं कि आप अपने शौक की चीज़ें बताइए, हम आपको शौक की चीज़ें भी देंगे। भाई उम्र है, जैसे हम, बाकी बच्चे बढ़ रहे हैं, वो भी
1: बिल्कुल
0: बढ़ रहे हैं,
1: जी
0: तो हम इस तरह से उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, बंधने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो हमें अपना माने
1: जी
0: और अपनी मन की बात, जो एक टीनेजर की होती है, वो हमसे शेयर कर सके।
1: जी
0: कोशिश है, देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इस में अपना योगदान देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बच्चे अगर हमसे जुड़े, हमें बहुत खुशी होती है।
1: जी सुषमा जी, आप आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, यही हमारा देश का भविष्य है। जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ, 10 से लेकर 19 साल तक के बच्चे, जिन्हें हम एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं,
1: जी
0: बहुत ही नाजुक दौर से चलते हुए ये बच्चे होते हैं। मेरे ख्याल से माँ, जो इनके मम्मी पापा भी होते हैं, उनको भी इस फील्ड की नॉलेज नहीं होती है कि बच्चों को इस उम्र में कैसे हैंडल किया जाए। एक तो ये, इनका शारीरिक ग्रोथ हो रही होती है,
1: जी
0: गर्ल्स बॉयज अलग तरीके से बढ़ रहे होते हैं।
1: जी
0: इस समय जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती है, जो बालिकाएं होती हैं, इनकी अपनी जो ग्रोथ होती है, इससे वो बड़े सारे कष्ट से गुजरती हैं।
1: जी
0: लेकिन माँ बाप भी जल्दी से इस बात को जल्दी से एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हो रही हैं।
1: जी
0: तो इस युवा पीढ़ी से तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, आप इतने फॉर्चुनेट बच्चे हैं कि आपके मम्मी पापा आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि आपकी जिंदगी में न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें,
1: जी
0: बल्कि समाज के प्रति भी अपना कुछ योगदान दें।
1: जी
0: शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योगदान देकर आप न केवल अपने समाज को, अपने परिवार को भी, और साथ में देश को भी बेहतर बना सकते हैं। मैं उनको चाहूंगी कि स्कूल लेवल में ही जो शिक्षिकाएं हैं, उन बच्चों को समाज सेवा का महत्व बताएं,
1: जी
0: उन्हें प्रेरित करें कि जरूरतमंदों की सेवा करके आत्मसंतुष्टि बहुत अधिक मिलती है,
1: जी,
0: उन्हें अच्छे कार्य के लिए समय समय पर पुरस्कृत किया जाए।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: अगर हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, बच्चे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है, तो अगर हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, प्रेयर में उनके नाम या सर्टिफिकेट देंगे, तो जरूर

0: आगे जाके समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा की कहानियां सुनाएं, उन्हें उदाहरण दें, और कभी कभी उन्हें ऐसे ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, लेप्रसी आश्रम जरूर विजिट कराएं।
1: जी
0: बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं हमारे, जो कई सारे जो दिमागी तौर से थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, उनके पास जाएं, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें दिवाली में या किसी भी मेले में जो दिखाई जाती हैं, अपना घर भी हमारा जो एनजीओ है वो भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है और
1: जी
0: उसका हम डिस्प्ले करते हैं। मोमबत्तियाँ आती हैं हमारे स्कूलों में और कई तरह के कैंडल वगैरह बनाते हैं,
1: जी
0: बच्चे उन्हें खरीदते हैं कि हम ऐसे बच्चों ने बनाया हुआ है। तो इस तरह की अगर हमें उन्हें
1: एक छोटे छोटे प्रयास कहेंगे
0: प्रयास
1: हम।
0: करेंगे छोटे छोटे, तो जरूर हमारे इन कोमल दिमाग में जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको जिस डायरेक्शन में ढालेंगे ये ढल जाएंगे।
1: जी
0: ये तो वो पौधे हैं, अभी पेड़ तो बने नहीं, कि जिस तरह से हम इन्हें कहीं उनको डांट के, उनको कभी उनको प्यार से हैंडल करेंगे, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेंगे या बहुत बड़ा एक देश की पूंजी है ये।
1: जी
0: ये इन तरीकों से हम समाज सेवा करेंगे और अपने बच्चों का जो ह्यूमन रिसोर्स है,
1: जी
0: जो हमारे पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, इन्हीं को पालना है हमको। बड़े लोगों को हम नहीं समझा सकते, वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये जो हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है
1: जी
0: इनको समाज सेवा के प्रति तत्पर करना, ऐसी वैल्यूज डालना, क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन तो मोबाइल के अंदर बहुत भरा हुआ है।
1: जी
0: वो कोई भी यूट्यूब चैनल देखेंगे, वो कोई भी गूगल करेंगे, वो कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारी शिक्षा के क्षेत्र में वैल्यूज को, मूल्यों को इनके जीवन में डालना, ये एक अध्यापिका की सबसे महत्वपूर्ण इस समय समाज के लिए देन होगी।
1: जी
0: हम इन बच्चों को मूल्य सिखाएं, वैल्यू सिखाएं समाज के प्रति, वंचित बच्चों के प्रति इनके अंदर से इनके मन में प्यार आए, कुछ हेल्प करें, बड़े हो जाएं प्रति, इसके प्रति इनके दान करें,
1: जी
0: ऐसा हमारी एक कोशिश है।
1: जी तो सुषमा जी, आपको लगता है कि समाज और सरकार वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए?
0: बिल्कुल,
1: तो किन मुख्य क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है?
0: समाज और सरकार अगर साथ चले तो मेरी समझ से हम देश की सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, क्योंकि सरकार और समाज अगर एक साथ चलता है, और दो जो पहलू आपने मुख्य पहलू पूछे हैं
1: जी
0: मेरे ख्याल से वो दो स्तंभ हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य।
1: जी
0: अच्छी शिक्षा देकर और अच्छी स्वास्थ्य की फैसिलिटीज देकर
1: जी
0: हम ये देख सकते हैं कि आप जो परिवर्तन चाहते हैं ये दो चीजें परिवर्तन हो जाए। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और
1: जी
0: दूसरी तरफ अगर इनका बेस मुख्य जो इनका इनके लिए हम अगर अच्छे खाने की प्रबंध कर सके, जैसे कि भारत की योजनाएं हैं मिड डे मील योजना,
1: जी
0: जिसमें हम उन्हें बहुत पौष्टिक खाना खिलाते हैं, कम से कम एक समय दिन का जब उन्हें पौष्टिक खाना मिल जाता है
1: जी
0: तो, और साथ में शिक्षा, तो
1: जी
0: आप देखिए भारत इतने वंडर्स करेगा, इतने चमत्कारिक परिवर्तन भारत में आएंगे अगर सरकार केवल दो ये स्तंभ। इसके लिए मैं जापान का एग्जाम्पल देना चाहूंगी।
1: जी
0: जापान अपने देश में किसी भी बच्चे को ना कभी आर्थिक सहायता करता है, ना कभी उनको कोई कोई और गिफ्ट वगैरह का प्रचलन है, वो दो चीजों पे काम करते हैं, एक
1: जी
0: शिक्षा और एक स्वास्थ्य।
1: स्वास्थ्य
0: और हम देख सकते हैं इतना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद आज वो एशिया का क्या वर्ल्ड का भी बहुत ही एक मुख्य देश, इम्पोर्टेंट फास्ट ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है। तो
1: जी
0: मुझे भी लगता है हमें इस एग्जाम्पल से समझते हुए, इस उदाहरण से लेते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही काम करें,
1: जी
0: बाकी तो परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे।
1: जी सुषमा जी, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और अपने प्रेरणादायक अनुभव हमारे साथ साझा किए। हम आशा करते हैं कि आपका ये सफर आगे भी इसी तरह प्रेरणादायक बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इस मौका देने के लिए, क्योंकि इस मंच से जो हम कहेंगे शायद लोगों तक यह पहुँचेगा
1: जी
0: और हमारी जो कोशिश है वो सफल होगी।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: बहनों, अभी हम श्रीमती सुषमा बिष्ट के साथ कर रहे थे ये खास बातचीत, और विषय था आत्मनिर्भरता की ओर कदम। 100.5 MHz पर आप बने हुए हैं कार्यक्रम महिला जगत के साथ। बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फेवरेट प्रोग्राम रेडियो सखी प्रत्येक गुरुवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपको बुधवार को ठीक 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हमें व्हाट्सएप करना कॉल करनी होगी। हमारा फ़ोन नंबर है 7088001382, ताकि हम आपके फरमाइशी गीतों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो कॉल करना ना भूलें। बहनों, किसी भी समाज की वास्तविक समृद्धि तभी संभव है जब उसकी महिलाएं आत्मनिर्भर, शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त हों। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी विकास की राह पर आगे बढ़ती हैं। इसी सोच को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों में महिला समृद्धि योजना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और आय बढ़ाने वाले कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के आत्मनिर्भर बन सके। ये योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का सपना देखती हैं। जब महिलाओं को वित्तीय सहायता और अवसर मिलते हैं तो वो सिलाई, बुनाई, डेयरी, हस्तशिल्प, लघु उद्योग तथा अन्य स्वरोजगार आदि के माध्यम से अपनी पहचान बना सकती हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ती है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक महिलाएं ऐसी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, पात्रता की जानकारी लें और उनका लाभ भी उठाएं। जागरूकता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। आइए हम सब मिलकर के ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला आत्मनिर्भर, सम्मानित और समृद्ध हो, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तभी परिवार, समाज और देश सच्चे अर्थों में समृद्ध होगा। तो बहनों, संगीत का सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले महिलाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कई बार सही समय पर मिली हुई जानकारी ही किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी भी महिला को संकट या हिंसा की स्थिति में सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन उपलब्ध है। तो बहनों, बातों का सिलसिला यहीं थमता है, लेकिन सुरों का सफर अभी जारी है। आइए सुनते हैं एक सदाबहार नगमा।

बहनों, अब चलते चलते रसोई घर से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन फरा की रेसिपी। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है और कम तेल में तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है 1 कप चावल का आटा, 1/2 कप उबली हुई चना दाल, 2-3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार और 2 चम्मच तेल। सबसे पहले चावल के आटे में थोड़ा सा नमक डालकर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंद लें। अब उबली हुई दाल चना को इतना हल्का दरदरा पीस लें जिसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, जीरा और नमक मिलाकर भरावन तैयार करें। अब प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालें, स्टैंड या छलनी रख दें, तैयार फरे उस पर रखें। कुकर का ढक्कन बंद करें लेकिन सीटी ना लगाएं। इन्हें लगभग 15 से 20 मिनट तक भाप में पकने दें। आप चाहें तो तेल गरम करके इसमें राई, जीरा और करी पत्ते का तड़का भी लगा सकती हैं और फरे को हल्का भून सकती हैं। तो श्रोताओं, इस बार पारंपरिक व्यंजन फरे को जरूर बनाइए, स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी। आपसे विदा लेने का समय हो चला है। कार्यक्रम के विषय में अपने अनमोल सुझाव देने के लिए आप हमें 7088-0007-31 पर व्हाट्सएप कर सकती हैं। पत्र लिखने हेतु हमारा पता है, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी, निकट रिस्पना पुल। तो इसी के साथ मैं कीर्ति जगमोल अब आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। श्रीलंका के 40 अधिकारियों ने किया राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की जानकारी ली। जिला कारागार पौड़ी में एक जेल एक उत्पाद पहल के तहत पिरूल आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। पिरूल से उपयोगी चीजें बनाना सीखेंगे बंदी। मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू की। और नाबार्ड की अल्मोड़ा इकाई द्वारा केंद्र सरकार के सशक्त युवा समृद्ध भारत अभियान के तहत 3 माह का निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन विषय पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड में विकसित आपदा प्रबंधन प्रणाली, आधुनिक तकनीकों, पूर्व चेतावनी तंत्र, भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली तथा सामुदायिक सहभागिता आधारित पहलों का अध्ययन किया। प्रतिनिधि मंडल को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों की कार्यप्रणाली, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपदा अलर्ट जारी करने की प्रक्रिया और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित निर्णय सहायता प्रणालियों की विस्तार से जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन कार्यक्रम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से संस्थागत दक्षता बढ़ती है तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अधिक समन्वित और प्रभावी दृष्टिकोण विकसित होता है। जेलों को सुधार, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला कारागार पौड़ी में एक जेल एक उत्पाद पहल के तहत पिरूल क्राफ्ट आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका संचालन जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से जनकल्याण सेवा समिति कोटद्वार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से बंदियों को पिरूल से आकर्षक और उपयोगी हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रिहाई के बाद वे स्वरोजगार स्थापित कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। एक रिपोर्ट।
4: प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बंदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों का अवलोकन किया तथा उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होने वाले उत्पादों की देश विदेश के बाजारों में लगातार मांग बढ़ रही है। पिरूल जैसे वन संसाधन को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर आजीविका का मजबूत माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने प्रशिक्षण को केवल कौशल विकास तक सीमित न रखते हुए इसे उद्यमिता से जोड़ने पर बल दिया ताकि बंदियों को भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण में सजावटी वस्तुएं, गृह उपयोगी सामग्री और अन्य नवाचार आधारित उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तैयार उत्पादों की बायबैक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और उससे प्राप्त आय का उपयोग बंदी कल्याण व उनके पुनर्वास संबंधी गतिविधियों में किया जाएगा। इससे बंदियों का उत्साह भी बढ़ेगा और उन्हें अपने कौशल का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि व्यक्तियों में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनके भीतर आत्मविश्वास विकसित किया जा सकता है जिससे वे भविष्य में अपराध से दूर रहकर सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर होंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
3: आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाएं 25 जुलाई तक पूरा करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
5: कांवड़ बैठक को लेकर विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर ली गई हैं। जनपद स्तर पर आयुक्त महोदय के द्वारा और साथ ही प्रभारी मंत्री जी के द्वारा बैठक कर ली गई है। बैठकों में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट उसके द्वारा धरातल पे कार्रवाई शुरू कर दी है, भले वो सड़क की रिपेयरिंग हो या फिर बिजली के काम हो, पानी के काम हो या फिर झाड़ी कटान आदि। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को भी डायरेक्शन दिए गए हैं। ऑलरेडी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आज उसका रिव्यू भी किया गया है। सभी डिपार्टमेंट्स को युद्ध स्तर पर कार्य पूर्ण करने के लिए बताया।
6: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: टिहरी जिले में मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि दूरस्थ और आपदा संभावित क्षेत्रों में 3 माह की अतिरिक्त खाद्यान्न सामग्री अग्रिम रूप से पहुंचा दी गई है, ताकि सड़क संपर्क टूटने की स्थिति में लोगों को राशन की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिले के संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां मशीनों और आवश्यक संसाधनों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही 8 आपदा चौकियों और जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को भी 24 घंटे सक्रिय रखा गया है।
7: हम लोगों ने अपनी 117 स्लाइड जोन जो है वो चिन्हित करे, वहाँ पे सभी जगह जेसीबीज डिप्लॉयड करी है। हमारे रिस्पांस टाइम जो है हम 30 मिनट से कम बना रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा खाद्यान्न है वो हमने एडवांस में 3 महीने का जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ भेज दिया है। लगभग हमारे 16 जो क्षेत्र है वो ऐसे पड़ते हैं जहाँ हमने एडवांस में खाद्यान्न भेज दिया है। साथ ही साथ जो हम लोग कभी फूड पैकेट्स जो राशन के किट्स हम लोग बनाते हैं उसका भी हम लोगों ने एक टेंडर करके रख लिया है, ताकि कभी भी इमरजेंसी में होता है तो हम उन्हीं रेट्स पे हम उनको सप्लाई कर।
3: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की अल्मोड़ा इकाई द्वारा केंद्र सरकार के सशक्त युवा समृद्ध भारत अभियान के तहत 3 माह का निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रतिभागियों को विशेषज्ञों ने मौन पालन, पशुपालन, कृषि, उद्यानीकरण, तकनीकी क्षेत्र में रोजगार परक तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक गिरीश पंत ने कहा कि नाबार्ड द्वारा सामाजिक विकास समिति अल्मोड़ा के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए ये प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।
8: इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के 30 जो बेरोजगार युवक या युवतियां हैं उनको इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देके, जो कि लगभग 390 घंटों का प्रशिक्षण होगा, जिसमें कि 30 घंटों का ऑन जॉब प्रशिक्षण भी दिया जाने वाला है। तो इसके बाद इसमें जो मुख्य कार्यक्रम है, इसके ट्रेनिंग के पश्चात इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और 80% प्रतिभागियों को प्लेसमेंट देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जो सामाजिक विकास एवं प्रबंध समिति है, ये यहाँ पर एक बहुत अनुभवी संस्था है जो कि इस कार्यक्रम को नाबार्ड के सपोर्ट से चलाएगी।
3: पड़ोसी देश नेपाल के छात्र भी अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस पर अपनी मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया का कार्य देख रहे डॉक्टर सुमित प्रसाद ने बताया कि नेपाल के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम शुल्क और अध्ययन केंद्रों की सुविधा को लेकर अलग से दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे।
9: जी देखिए, पहले UGC के नियम के अनुसार हमने फॉरेन नेशनल्स के लिए एडमिशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बंद कर दिए थे, परंतु आज जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप नेपाल के जो भी नागरिक है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम पूरी प्रक्रिया वेबसाइट पे मेंशन करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी ABC ID और DAB ID का निर्माण करके जो भी पाठ्यक्रम हमें UGC DAB से मान्यता प्राप्त है उन सभी पाठ्यक्रम में वो प्रवेश कर पाएंगे।
3: विश्वविद्यालय प्रशासन ने UGC के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सुदृढ़ होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका के 40 अधिकारियों ने किया राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की जानकारी ली। जिला कारागार पौड़ी में एक जेल एक उत्पाद पहल के तहत पिरूल आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। पिरूल से उपयोगी चीजें बनाना सीखेंगे बंदी। मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू की और नाबार्ड की अल्मोड़ा इकाई द्वारा केंद्र सरकार के सशक्त युवा समृद्ध भारत अभियान के तहत 3 माह का निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मौसम से। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का युगल सर फिल्म महबूबा से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म महबूबा में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म मिलन से। इस गीत को लिखा है, इसको संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है।
1: को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40

0: करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: बिमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
0: जी जी जी सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी, तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब, यानी यहां भी इंटरनेट की तरह WWW है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजी जी, कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी, हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल।
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं।
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है।
0: जी
1: वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहां नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी
1: तो
0: से।
1: आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Attention please, Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please, Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर

0: उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
0: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
0: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
0: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
0: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
0: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
3: आओ चलो आओ।

0: सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये

0: हाँ, लोगों के पास रहने को घर नहीं।
1: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
0: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
1: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
0: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
1: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
0: हाँ, बिल्कुल वैसी।
2: कमाल है
0: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
2: वाह।
0: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
1: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
0: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
2: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
1: इतने जल्दी?
2: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
1: हाँ, जाना है।
0: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
2: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा।

0: ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
0: हाँ तो आओ, चलो आओ, कादर आओ, आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?

0: वाह कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वह क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
6: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna, of the Republic of Indonesia in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. President Draupadi Murmu flags off trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration. The two leaders also reaffirmed their commitment to strengthening the Indonesia comprehensive strategic partnership. During talks in Jakarta, the two leaders witnessed the signing of several MOUs covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security and digital technology.
7: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
6: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
7: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
6: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
7: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetr mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
6: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
7: People-to-people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
6: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the conferment of Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon Prime Minister Modi is a matter of immense pride for all Indians. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kokje and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July the 26th, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. The government has debunked videos circulating on social media falsely claiming that the Chinese army has entered 60 kilometers into India.

0: Weather Department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. In Gujarat, heavy monsoon rains continue to lash several parts of the state, especially in Saurashtra and South Gujarat region, with Vapi and Valsad district recording a maximum of 8.5 inches rainfall in the last 24 hours, a report.
1: Heavy rains have affected normal life in the state, leading to temporary relocation of over 700 people, closure of 80 regional roads and power disruptions across multiple rural pockets. Waterlogging in the Mumbai division has led to cancellation of major trains heading from Ahmedabad, Surat, Jamnagar and Okha. As a precautionary measure, schools and Anganwadis in Surat and Navsari districts have been ordered to remain closed today. Meanwhile, the IMD has maintained its active warning for heavy to exceptionally heavy spells across South Gujarat and parts of Saurashtra, advising fishermen to avoid venturing into the Arabian Sea until 9th of July. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the newskeeper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
3: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने

0: रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक

0: खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर

0: समाचार मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा को, उनकी पुण्यतिथि पर।

साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पालमपुर में ही हुई थी और उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की, लेकिन कॉलेज के पहले साल में ही उनका चयन एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर के वायु विंग में हो गया था और बाद में उन्होंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपनी एनसीसी इकाई में वरिष्ठ अवर अधिकारी का पद प्राप्त किया और इसके बाद उन्होंने 1994 में एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का उन्हें मौका मिला और उसके बाद जब वो घर वापस आए तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि उनके नाना भी भारतीय सेना में सैनिक थे।

साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम नमन कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की। साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1996 में CDS की परीक्षा पास की और उसके बाद उनका चयन SSB में भी हो गया था। और CDS की ट्रेनिंग के बाद उन्हें जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में पहली पोस्टिंग मिली, जो कि एक उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र था। अक्टूबर 1998 में सोपोर में अपनी बटालियन का उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया।

सैनिक साथियों, जनवरी 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा को कर्नाटक के बेलगांव में कमांडो कोर्स के लिए भेजा गया और उनका जब प्रशिक्षण कोर्स 2 महीने तक चला, उसके बाद उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग प्रशिक्षक ग्रेड से भी सम्मानित किया गया और लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवा शुरू करते हुए वे कैप्टन के पद तक पहुँचे।

कैप्टन विक्रम बत्रा को जो पुरस्कार मिले उनकी बात की जाए तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन विजय स्टार, विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन विजय मेडल और स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ का पदक भी उन्हें प्राप्त हुआ।

सैनिक साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को जम्मू कश्मीर के कारगिल युद्ध के दौरान कारगिल ज़िले के पॉइंट 4875 पर पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने उनके वीरतापूर्वक कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी शहादत पर देश उन्हें नमन करता है। जय हिंद।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। अब सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4,39,00,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस योजना के तहत मार्च माह तक की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन विषय पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 40 सदस्यीय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया, प्रदेश के आपदा प्रबंधन मॉडल को जाना। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा जिले के छावनी क्षेत्र रानीखेत में वृहद वृक्षारोपण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मॉल रोड रानीखेत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देवदार, बांज, उतीस और अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत देहरादून जिले में डोईवाला के फतेहपुर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। इस अवसर पर खेल विभाग ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। जिला कारागार पौड़ी में एक जेल एक उत्पाद पहल के तहत पिरूल आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। बंदियों को पिरूल से उपयोगी उत्पाद बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। पड़ोसी देश नेपाल के छात्र भी अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पर अपनी मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोता भी आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का ये गाना, जिसे लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सवारा था अमित त्रिवेदी ने। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गब्बर इज बैक से। इस गीत को अपनी आवाज दी है नेहा कक्कड़, यो हनी सिंह और साथी ने। गीत को लिखा है साहिल कौशल ने और संगीतबद्ध किया यो हनी सिंह ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म डुप्लीकेट से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। जावेद अख्तर के लिखे शब्दों को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हाले दिल फिल्म से। सोनू निगम और पामिला जैन का युगल स्वर है। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है आनंदराज आनंद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म का ये गाना। आवाज़ें थी नवराज हंस, हश्मिका अय्यर, अभिषेक नैनवाल और गुलशन कुमार की। इस गीत को लिखा था कुमार सूर्यवंशी ने और संगीतबद्ध किया था समीरुद्दीन ने। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। इस गीत को गाया है बेनी दयाल, अदिति सिंह शर्मा ने और लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया है सुहेल सैन ने।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मशान फिल्म से अमित किलम, राहुल राम और हिमांशु जोशी की आवाज़ में।

विशाल मिश्रा और आशीष कौर की युगल स्वर में हम आपको सुनवा रहे हैं नोटबुक फिल्म का गाना, जिसे लिखा है अक्षय त्रिपाठी ने और संगीतबद्ध किया है विशाल मिश्रा ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नोटबुक फिल्म का गाना विशाल मिश्रा और आशीष कौर की आवाज़ में, जिसे लिखा था अक्षय त्रिपाठी ने और संगीतबद्ध किया था विशाल मिश्रा ने। अब आपको सुनवा रहे हैं पानीपत फिल्म का गाना अभय जोधपुरकर और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से संवारा है अजय अतुल ने।

FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अब आपको सुनवाते हैं अलीशा चिनॉय और हरत कौर की आवाज़ में फिल्म प्रिंस का गाना, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है सचिन गुप्ता ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत आपको फिल्म करीब करीब सिंगल से। इस गीत को गाया है पापू ने और इस गीत को लिखा है हुसैन हैदरी ने, संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं रॉक ऑन फिल्म से। इस गीत को गाया है फरहान अख्तर ने और लिखा जावेद अख्तर ने है, संगीतबद्ध किया शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, रॉक ऑन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 4,39,00,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि DBT के माध्यम से जारी की। लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून माह की धनराशि जारी की गई है। चंपावत जिले में लोहाघाट क्षेत्र के प्रस्तावित मास्टर प्लान के प्रारूप पर आमजन और हितधारकों के साथ सुझाव और आपत्तियों को लेकर हुई बैठक। मास्टर प्लान का उद्देश्य पूरे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। आगामी कुंभ मेला की सुरक्षा, यातायात व आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में पुलिस कर्मियों का 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा जिले के छावनी क्षेत्र रानीखेत में वृहद वृक्षारोपण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मॉल रोड रानीखेत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देवदार, बांज, उतीस और अन्य चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण किया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत देहरादून जिले में डोईवाला के फतेहपुर में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी। 130 इन्फेंट्री बटालियन पर्यावरण कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों और पात्र अभ्यर्थियों के लिए आगामी 3 से 8 अगस्त तक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती रैली पिथौरागढ़ स्थित देवकठिया मैदान में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से होगी। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए 7 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया। नई व्यवस्था के तहत मंदिर के पुजारियों को बिना जेब वाला कुर्ता पहनकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। और मौसम विभाग ने देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सप्तक शर्मा का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ताल 3 ताल।

Tuck it,

धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर धीर

एक गुलाम हुसैन खां साहब हैदराबाद के थे, बड़े बड़े उस्ताद, उनकी गते कोशिश करूंगा। तक दा ना दिन दिन ना ना तिन तिन ना तक दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन दा ना तिन तिन ना तक तक तक तक दिन त्राण था दिन ना कथन आड़ तक तक तक तक तक दिन था कृतक था कृतक था कृतक था कृतक था दा दा दी कृतक दिन ना था दिन ना कथन आड़ तक तक तक तक तक दिन था कृतक था तक धर धर कृतक कृतक तक धर धर कृतक था कृतक धर धर कृतक था कृतक धर धर कृतक था कृतक धर धर कृतक था कृतक धर धर कृतक था। फरमाइशी है।

Dada,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सप्तक शर्मा का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे ताल तीन ताल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज फिर हाजिर हैं एक नए कलाकार के साथ। हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने पार्श्व गायक कैलाश खेर।

श्रोताओ, आज कैलाश खेर का जन्मदिन है। आज ही के दिन 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आज के खास अवसर पर आपको सुनवाते हैं उनके गाए हुए कुछ और गीत, और बातें होंगी उनके जीवन से जुड़ी।

श्रोताओं, अपनी मखमली और सुरीली लेकिन कुछ अलग हट के उनकी जो आवाज़, उसे चाहने वाले लाखों दिल हैं, और उनकी इस शैली से लाखों दिल उन्हें सुनते हैं और वो लाखों दिलों पर राज भी करते हैं। कैलाश खेर के रोम रोम में गीत संगीत बसता है। वो गानों को सिर्फ गाते ही नहीं हैं, बल्कि वो संगीत को जीते भी हैं। उन्होंने अपने साथी गायकों के साथ भी गाने गाए, और आइए ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं, ऋचा शर्मा के साथ गाया हुआ उनका

श्रोताओं, कैलाश खेर को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता पंडित मेहर सिंह एक पारंपरिक लोक गायक थे और कैलाश की जो पहली संगीत शिक्षा हुई थी वो उनके पिताजी से ही उन्हें मिली थी। उनका मन संगीत में रमता था और बचपन से ही वो सिंगर बनना चाहते थे और उन्होंने मन भी बना लिया था कि वो सिंगर ही बनेंगे और संगीत में ही वो अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें सिंगर बनने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैलाश खेर ने संगीत के लिए अपना घर परिवार तक छोड़ दिया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में वो मेरठ से दिल्ली आ गए और वहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर ली थी और अपने खर्चे के लिए उन्होंने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया था।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक कैलाश खेर की। कैलाश खेर ने अपने जीवन में मन की शांति के लिए कुछ वक्त ऋषिकेश में रहकर साधु संतों के बीच में भी बिताया और वहाँ पर उन्होंने अपने संगीत का रियाज जारी रखा। आइए आपको एक और गीत सुनवाते हैं उनका गाया हुआ।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं कैलाश खेर की। उनके गाए हुए गाने लगभग सभी हिट रहे। उनके हिट गानों की अगर बात की जाए तो उसमें रब्बा इश्क ना होवे और अल्लाह के बंदे हंस दे, ये गाने बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे। इसके अलावा उनके गाए हुए गानों में पिया घर आवेंगे, बम लहरी, सैया और तेरी दीवानी भी शामिल हैं। एक बार फिर से हम उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते हैं कि वो अपने चाहने वालों के लिए ऐसे ही गीत गाते रहें, गुनगुनाते रहें और उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा यूं ही सुनते रहें। शुभकामनाओं के साथ आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में उनका गाया हुआ कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।